दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Hi, South Africa. I'm Michael Owen. If you appreciate world-class sport and a great occasion, the Hollywood Bets Durban July is the place to be. The theme for 2026 is Country Allure, which sees the rustic style of the countryside meet the cosmopolitan cool of the city. On Saturday, the 4th of July, it all comes together at Hollywood Bets Greyville, Africa's greatest horse racing and social event. I'll see you there.
1: Johannesburg. A musical fusion with Bedouin Bala continues to break records. And now, by public demand, we've added a second show at 3 p.m. at Gold Reef City's Lyric Theatre on Saturday, 20 June. That's right, a second show at 3 p.m. has been added. Tickets from 150 Rand, only from Ticket Pro. A musical fusion with Bedouin Bala.
2: You are listening to Geek Dandrali. You are listening to Geek Dandrali. Lotus FM.
3: वेलकम बैक टू गीतांजलि. आप सुन रहे गीतांजलि मेरे साथ खुशी पारेख के साथ. तो बहुत सारे आंसर्स आए हैं. हमें आंसर दिया है प्रीता जी ने फ्रॉम जोबर्ग, अमिता जी ने फ्रॉम जोबर्ग, आशा जी ने, काजल राजकुमार जी ने, अंजना सोलंकी जी ने लनेशिया से, जखीरा जी ने, पिक्सी एंड मॉली जी ने, प्रोफेसर दौलत रामदास भगवान दीन फ्रॉम साल्ट रॉक, वी हैव मैसेज from Cape Town, from DDG. We have a message from Julia Roberts. We have a message coming in from Anil Ram Sarupji. Okay, we have lots and lots of messages coming in. And yes, most of you have got it correct. Most of you have got it correct. आपने बहुत ही सही सही guess लिया है. ये कोई और नहीं है, ये है हमारी अपनी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु गॉट इट राइट. माधुरी दीक्षित वॉज बोर्न ऑन 15th May 1967 इन मुंबई. शी इज अ लेजेंडरी इंडियन एक्ट्रेस एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड कथक डांसर. उनका पूरा नाम है माधुरी शंकर दीक्षित. उनके माता पिता का नाम है शंकर और स्नेहलता. वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है और उन्होंने कथक में ट्रेनिंग ली है. प्रोफेशनल कथक डांसर है वो. उनके जो बॉलीवुड का करियर है वो एक मूवी से शुरू हुआ था 1984 में और उस मूवी का नाम है अबोध. लाइक ओ माय गॉड, व्हेन आई सी माधुरी दीक्षित I see beauty. मतलब कि उनको देखते ही इतना प्यार आता है उनपे. कितने प्यारे एक्सप्रेशंस, कितनी प्यारी स्माइल, और उनका मैजिक ही कुछ और है. मैं जब से 3 साल की थी तब से मैं माधुरी दीक्षित की दीवानी हूँ. मतलब कि वो जो मूवी ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. मैं बस बचपन से यही सोचती मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. इतनी प्यारी है मुझे माधुरी दीक्षित. मतलब मुझे इतनी पसंद है माधुरी दीक्षित, मेरी फेवरेट है. शी इज जस्ट सो सो सो ब्यूटिफुल. अपकमिंग अनदर सॉन्ग ऑफ माधुरी दीक्षित, एंजॉय.
4: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी.

That was a beautiful song from Ye Jawani Hai Deewani. इस सॉन्ग में थे रणबीर कपूर और माधुरी दीक्षित जी. क्या डांस किया था उन्होंने. मतलब कि मैं तो पागल हूं ही माधुरी दीक्षित जी के लिए, लेकिन कोई और भी है जो उनके पीछे इतने इतने पागल थे, और उनका नाम है MF हुसैन जी. MF हुसैन जी एक बहुत ही ज्यादा फेमस फेमस पेंटर थे. तो MF हुसैन जी माधुरी दीक्षित के इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे कि उन्होंने तो माधुरी दीक्षित को लेके मूवी तक बना दी, गज कामिनी. गज कामिनी में माधुरी दीक्षित जी को उन्होंने कास्ट किया, और वो मूवी मूवी आई थी 2000 के साल में. शाहरुख खान के साथ उनकी मूवी थी ये. उन्होंने हम आपके हैं कौन 67 टाइम्स देखी है, और आजा नचले देखने के लिए जो माधुरी जी का रिटर्न था, कमबैक था, उन्होंने पूरा थिएटर बुक कर दिया था. मतलब कि इतने बड़े दीवाने थे MF हुसैन जी माधुरी दीक्षित जी के लिए. माधुरी दीक्षित दिखने में, उनका फिगर, उनके एक्सप्रेशंस, मतलब कि क्या बोले. जो माधुरी दीक्षित का फैन है ना, वो ही समझ सकता है मेरी फीलिंग्स. मतलब कि बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित जी. उनकी चुलबुली एक्सप्रेशंस ऐसी, तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड में मैंने पर्सनली सिर्फ 3 या 4 एक्ट्रेस देखी है जिनके एक्सप्रेशंस एकदम चुलबुले और एकदम मतलब कि प्यार आ जाए उन पर. एक तो माधुरी दीक्षित जी है, और दूसरी है श्रीदेवी जी, और जूही चावला, और प्रीति जिंटा. मतलब कि क्या चुलबुले एक्सप्रेशंस है उनके. एंजॉय कीजिए ये दूसरा सॉन्ग.

0: You are listening to Geetanjali. Geetanjali. Mondays, 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: Welcome back to Geetanjali. You are with your very own Khushi Parekh listening to Geetanjali. तो अभी जो आपने ये गाना सुना है वो गाना है खलनायक मूवी से. तो माधुरी जी was romantically linked to her खलनायक co-star संजय दत्त. The two reportedly got close to each other during the film's shoot. However, according to a report, it is believed that Sanjay's Tata arrest was the cause for the couple's splitting. It was at the peak of her career that Madhuri Dixit married Dr. Sriram Madhav Nene, a cardiovascular surgeon, and moved to Denver, Colorado, where she lived for 10 years before returning to India in 2011 for good with her husband and kids in town. तो उसके बाद माधुरी जी साउथ अफ्रीका भी आई थी. अगर आपको पता हो तो यहाँ पे साफ्टा करके अवार्ड फंक्शन हुआ था जब माधुरी दीक्षित आई थी. और मैं एक माधुरी दीक्षित की फैन गर्ल, मैं कैसे ना जाऊं. मैं वहां पे गई थी मेरे पूरे परिवार के साथ. इनफैक्ट मैं उनके प्राइवेट डिनर पे भी गई थी, लेकिन माधुरी जी उस प्राइवेट डिनर में आई नहीं थी. वो होस्ट हुआ था बेवली होटल में, लेकिन माधुरी जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वहां पे आई नहीं थी. लेकिन मैं मिली थी उस वक्त रणवीर सिंह जी से, और वो शूटिंग कर रहे थे रामलीला की. तो बड़ी बड़ी मूछें और उसी लुक में थे वो, लेकिन माधुरी जी से मिलना नहीं हुआ. लेकिन जब वो स्टेज पे आए साफ्टा के अवार्ड फंक्शन में और जब उन्होंने डांस किया, तो मतलब कि मैं तो इतनी ज़्यादा खो गई उनके परफॉर्मेंस में कि मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे बस उनको देखना था, ना रिकॉर्ड करना था, ना किसी के साथ कुछ डिस्कस करना था. मतलब कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड तक नहीं किया. मुझे वो मोमेंट ना बस अपनी आंखों में बसा कर अपने मन में सेव करना था, ना इमेजिन व्हाट अ बिग फैन गर्ल आई एम ऑफ हर्स. मतलब कि मैं कथक करती हूँ, मैंने एक्टिंग भी की है इंडिया में, तो जो भी एक्सप्रेशंस मैंने सीखे हैं, जो भी मूव्स सीखे हैं, वो उन्हीं को देख देख के मैंने सीखे हैं. माधुरी जी फैन है मधुबाला की और मैं हूँ फैन माधुरी जी की.

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

0: You're listening to Geetanjali. Mondays, 6 to 7 p.m. Lotus FM.
1: Mohini, Mohini, Mohini, Mohini. You are listening to Geetanjali with your very own Khushi Parekh. जो हाल उधर है वो हाल इधर भी है. इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये शो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो. अगर मैं आपको स्टूडियो दिखा पाती अभी तो मतलब कि हर एक गाने पे ना मेरे मूव्स निकल रहे हैं. मतलब कि हर एक गाने पे यहाँ पे इतनी एनर्जी आ रही है स्टूडियो में, मैं क्या बताऊं. और आई एम श्योर के घर पे भी आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस शो को. मतलब कि कितने सारे मैसेजेस आए हैं. मैसेजेस आए हैं यहाँ पे मैगी चट्टी से, जाकिरा जी से, रवि जी से, सुरेन जी से, और बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हैं. मैसेजेस आया है अनिल जी से भी. ओके, परफेक्ट. दिस इज सो ब्यूटिफुल. आई जस्ट लव द एनर्जी, लाइक द सेम एनर्जी दैट आई हैव हियर. यू वाला जो एनर्जी यहाँ पे है वही सेम एनर्जी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी दे रहे हैं. मतलब ये कितनी खूबसूरत बात है. ये माधुरी जी, शी हैज वन 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स. शी इज सेट टू बी द ओनली एक्ट्रेस इन बॉलीवुड विद द मोस्ट फिल्मफेयर अवार्ड नॉमिनेशंस विद दिस काउंट टोटल. सॉरी, आई बेग योर पार्डन, विद द काउंट टोटलिंग टू 13. इन 2008 शी वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड by the government of India. She was also awarded the National Citizens Award on August 25, 2001. Matlab ke pure desh mein Madhuri ji ka charcha tha aur government ne bhi unhe bahut hi zyada saraha unko awards dekar. तो माधुरी जी मतलब कि शी इज अ नेशनल थ्रॉब, लाइक यू नो एवरीवन लव्स हर. और इंटरनेशनली भी एवरीवन लव्स हर. कमिंग अप अनदर सॉन्ग ऑफ माधुरी जी.

आजा नचले, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ माधुरी दीक्षित. मतलब कि मैंने कितनी बार ये सॉन्ग परफॉर्म किया है स्टेज पे. बचपन में ना कोई भी घर पे आता था ना, तो मतलब कि मम्मी को पता था कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, तो मम्मी लाइक बेटा डांस करके बताओ. लाइक सच एम्बैरेसिंग मोमेंट्स. आई एम प्रिटी श्योर देयर इज मेनी मेनी ऑफ अस दैट हैज बीन थ्रू दिस. के इफ वी हैड सम टैलेंट इन अस, लाइक यू नो आवर पेरेंट्स वुड बी लाइक या प्लीज शो इट टू द गेस्ट, प्लीज शो इट टू द गेस्ट, लाइक यू नो हाउ यू डू इट. एंड देयर वाज लाइक सो एम्बैरेसिंग. आई होप यू ऑल आर नॉट डूइंग टू योर किड्स नाउ. प्लीज ऐसा मत कीजिए, किड्स एम्बैरेस हो जाते हैं. मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आया आप लोगों के साथ. लेकिन मतलब कि आरंभ है तो अंत है, अंत है तो आरंभ है. तो मैं छोड़े जा रही हूं आपको माधुरी दीक्षित जी के ये बहुत ही फेमस गीत के साथ. एंजॉय कीजिए. खुशी पारेख साइनिंग ऑफ फ्रॉम गीतांजलि.

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल।